एक है हरी हरी, ये ऐसा एक शुभ ते सच्चा विचार है जिसनू एक सच्चा ते सुच्चा भगत ही अपने जीवन दे विच कह सकता है, क्योंकि जिसका विचार एक परमात्मा दे नाल मिल गया, जिसका हर रोम रोम प्रभु चरणा दे विच रम गया और जिसका हर श्वास परमेश्वर दे नाल मिल गया, ऐसा भगत ही ये कह सकता है कि हमारे एक है हरी हरी। आन अवर सिंजान न करी, ओ परमात्मा अपने भगत नू गुरु राही नाम देवांदा है, जैसा कि मालिक ने शब्द दे विच फरमान कीता है।

जप भी करता है और यथा शक्ति अगर ज्यादा कोशिश करे ते तप भी कर लेंदा है। आम देखण दे विच आउंदा है कि रब दे नां ते कई व्रत भी रखते हैं।

साहिब फरमान करदे हन कि सारा कुछ परमेश्वर दी कृपा नाल गुरु तो ही प्राप्त हुंदा है।

ताप जो तप है, व्रत है, नेम है, आचार तो मतलब करैक्टर है मनुख दा, और व्यवहार जो रोज दा व्यवहार करदा है, जात जो कम तो पहचानिया जांदा है। साहिब फरमान करदे हन कि ए सारा कुछ जे मनुख करदा होया अपने गुरु दे अर्पण कर देवे ते मानो के जो त्याग दे विच उसनु सुख प्राप्त होवेगा, जो शांति प्राप्त होवेगी, ओहो ही सच्चा सुख है और ओहो ही सच्ची उसनु शांति प्राप्त होवे। साहिबां दा फरमान है कि जे कोई ये चाहे कि मैं महा आनंद दी प्राप्ति कर लवां, ते महा आनंद दी प्राप्ति है कि उस मालिक दी कीर्ति कीती जावे, उस मालिक दा जस गाया जावे। जैसा कि गुरु नानक पातशाह ने अपने जीवन दे विच कीता, अपने जीवन दे विच उन्हां ने होर कोई योग नहीं कीता, इको ही योग कीता कि उन्हां ने अपने प्राणा राही प्रभु दी कीर्ति कीती। इतना गाया प्राणा करके, इतना गाया कि उन्हां दा जप ही ज्ञान हो गया, उन्हां दा तप ही ज्ञान हो गया। और साहिब फरमान करदे हन कि जेड़ा उस परमात्मा दी कीर्ति सच्चे दिलों करदा है, ओ मालिक दी प्राप्ति दे विच सफल हुंदा है।

एक सपना है। हजूर बाणी विच भी बख्शिश करदे हन, सुपने सेती चित मूर्ख लाया। ओए मूर्खा, कदी सुपने भी सच्चे होए हन? सोच ए संसार भी सुपना है। जितने तियां पुत्र धन दौलत महल मारियां, जदों प्राण पंखेरू उड़नगे एक शिन विच सब कुछ पराया हो जाएगा। इसलिए ये सुपना है। सुपने नाल चित लाउन वाला मनुख कदे तोड़ नहीं अपड़े। इसलिए हजूर बख्शिश कर रहे हैं कि श्वासा नू सिमरन दी माला बना। श्वास श्वास हर नाम जप, बिरथा श्वास मत खो। क्या जाने ए अंतकाल ए श्वास मत हो। किसे नू की पता है कि जेड़ा श्वास मैं जप रहा सतनाम श्री वाहे गुरु, इस तो अगला श्वास आना कि नहीं आना इसका किनू पता है। इसलिए हजूर बख्शिश कर देखन भाई, सास ग्रास बंदगी कर, श्वासा का कोई पता नहीं। एक बुजुर्ग बाबा शरीर छड़न लगा, सारा परिवार आके बेनती करन लगा, बाबा जांदिया जांदिया कोई चंगी सुमति दे जा। ए बुजुर्ग बाबा कहन लगा, मैं अपनी होंद विच अपने जीवन विच तुहानू लखां ही कमा के दिते हन, हुण मेरे श्वास समाप्त हो गए हन, ते कुछ खर्च करके कुछ पैसे दे के ते श्वास लियाओ तां मैं तुहानू सुमति दे सकदा हां। पर इस सारे परिवार ने नीवियां पा लईयां, आख्या बाबा ये श्वास तो किसी भी कीमत तो मुल नहीं मिलते। फिर ये बुजुर्ग कहन लगा, फिर यही उपदेश है कि इना अमोलक श्वासा दे नाल नाम दे लाला दे वणज करना, तुहाडा संसार ते आउणा भी ते संसार तो जाना भी धनता दे योग हो जाएगा। ऐसा ना होवे ये लाल गुआच जान ते फिर तू लभदा फिरे, ये लभण वाले नहीं हन।

फिर उस परमात्मा दा सिमरन तू क्यों नहीं कर दी। ए जड़ी साड़ी जुबान है, ए है ते पता लगदा है कि स्वाद की है, मिठा है, नमक वाला है, और ए जुबान ही

इतना रोगी नहीं होता जिन्ना कि बहुता खाण वाला रोगी होता है। भुखे घट मरते ने बहुते खाण वाले ज्यादा मरते ने। रसना सतगुरु जी उपदेश कर रहे ने, ए रसना तू अन रस राच रही। अन रस कहते ने होर रस, होर रसा विच ते पै गई, ए भी खा लवा ओ भी खा लवा। किसी की निंदा चुगली की, किसी नु माड़ा कहा, किसी नु गालां कढ़िया, माड़ी गल करके किसी का घर बर्बाद कर दिता, ए काम ते तू कीता। पर ए रसना तू प्रभु का सिमरन नहीं किया। खाण दे भी रस हैं, झूठ बोलना भी रस है, निंदा चुगली करनी भी रस है, ते सारे रस तू

जितने भी कहण सुनने वाले अपने अपने मना विच चाती मारी दिन दे विच कितना झूठ बोल दे, कितनी निंदिया चुगली कर दे, कितना कुछ इस जबान दे नाल खाने हैं, कितनी बुराई कर दे हैं, ए ते हर बंदा जानदा। ते आओ पहला विचार करिए, जेड़े अपनी जुबान दे नाल झूठ बोलते ने, निंदिया चुगली करते ने, खाण दे चस्के हन जुबान, उन्हां बारे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की उपदेश करते हैं।

फिर क्या जे रसना नाम नहीं जपदी एदे छोटे छोटे टुकड़े कर दे। नामदेव जी कहंदे ने जे जुबान गोविंदा नाम नहीं जपदी एदे सौ टुकड़े।

कि अंत वेले तू मेरी सहायता करी। साध संगत घरवाली ने भी यही गल कही, मेरे माता पिता ने तुहाडे लड़ लाया, तुहाडा फर्ज है मेरी पालना करनी, इथे दुख सुख विच मैं तुहाडे नाल हां, पर जद उस दरगाह दे विच लिखा होगा मैं तुहाडी सहायता नहीं कर सकता। भाई गुरदास जी की पौड़ी है, घर विच पुछन कल्लिया अंत काल है होए आ सारा, घर विच महापुरशां ने भेजिया जा पुछ के आ, अंत वेले कोई

दो आलम कहंदे ने दो जहान तेगे तेगे क्या है तलवार नू किरपान नू नानक साहिब अस्त फतेह गोबिंद सिंह शाहे शाहान फजले सच्चा साहिब अस्त फजले कहंदे ने मेहर किरपा इना दोना लाइना दा अर्थ ए सिक्का दोहा जहाना वास्ते है गुरु नानक देव जी दी तलवार नाल अति शहनशाह दे शहनशाह सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी दी कृपा द्वारा ए सिक्का।

जिस थान ते हर आदमी नू शरण मिलदी है, जिथे एक सुंदर नगर वसदा है, अते जिसदा शिंगार ए भागां वाला तखत है, उस थान ते ए सिक्का बनाया गया। भाव कि ए जड़ा सिख राज दा सिक्का गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह दी कृपा द्वारा मैं चालू कर रहे हां, इस राज विच सब बराबर ने, इत्थे सारिआं नूं सत्कार मान इज्जत मिलदी है, और ए सिक्का गुरु दी कृपा द्वारा सिख राज दा पहला

चालू नहीं होया एदे पिछे बड़ी कालना। आओ ए जानन वास्ते थोड़ा जा इतिहास नु देखिए कि किस तरह सिख राज दा ए पहला सिक्का बाबा बंदा सिंह बहादुर ने शुरू किया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दसवें गुरु जिन्हां महापुरखां दी आत्मक अवस्था इस शिखर ते सी कि ओ धर्म अते

थोड़ा जहा ज्ञान जरूरी है। लिखे है लक्ष्मण देव का जन्म जम्मू अते कश्मीर की एक रियासत राजौरी विखे होया। जम्मू कश्मीर की एक प्रसिद्ध रियासत जिदा प्रसिद्ध नगर राजौरी जिथे लक्ष्मण देव का जन्म होया। इन्हां दे पिता एक मामूली जहे जागीरदार सन और एक दिन शिकार खेडदियां लक्ष्मण देव ने एक तीर दे नाल एक हिरनी नूं मार सुटिया, पर वह हिरनी गर्भवती सी। जदों हिरनी नूं तीर मारिया हिरनी जिहड़ी सी मरी, उहदे पेट विच दो बच्चे सन जेड़े के तड़फ तड़फ के वो भी मर गए। इन्हां छोटे छोटे बच्चियां दी मौत हिरनी दे नाल लक्ष्मण देव ने देखी, उहदे मन ते अजिहा असर होया कि उसने घर बार छड़ दिता। इस दुनिया तो उसका जी भर गया, पहला सन्यासी बनिया, उसका नाम नारायण गिरी पै गया, फिर बैरागी बनिया, योग सिख्या ले, फिर माधोदास बैरागी बन गया। कई जगह हुंदा होया, दखण

आश्रम बना के रहन लग पया अते अपना समा योग साधना विच बतान लग पया। इस गोदावरी के किनारे बहुत समा योग साधना करदया बीत गया। इत्थे ओ सारी दुनिया तो दूर सारी दुनिया नाल रुस के घोर तपस्या विच जुट गया। इसे जगह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आज अपने सिखां दे नाल घोड़ियां ते सवार होके पधारे हन। जिस वक्त माधो दास दे आश्रम पहुंचे ते माधो दास उस वेले अपने डेरे विच नहीं सन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज माधो दास दे डेरे पहुंचे अते जाके माधो दास दे पलंग ते विराजमान हो गए। माधो दास दे चेलिया ने कहा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नू कि ए साडे स्वामी दा पलंग है, आप जी इथे ना बैठो। पर गुरु साहब ने कहा असा जिथे बहना सी बह गए हैं क्योंकि गुरु दे कौतक गुरु जानदा है। उधर चेले जंगल विच भजे गए। माधो दास बैरागी नू जाके कहन लगे तुहाडे पलंग ते एक बड़ा तेजवान पुरुष आके बैठ गया, लाओ लश्कर भी नाल है। ओदे चेहरे अगे किसे दियां अखां नहीं हुंदियां। तां माधो दास गुस्से विच आ गया, कहन लगा दिखावे पलंग पर बैठने का स्वाद कि जेड़ा मेरे पलंग ते बैठा है मैं उन्हूं पलंग तों थले डेग दियांगा और अपनी योग शक्ति दे नाल जंगल विच बैठे हां पलंग नूं उल्टाण दी कोशिश कीती। पर माधो दास बैरागी पलंग नूं उल्टा ना सकिया। जद माधो दास बैरागी ने पूरा जोर लाया पलंग उल्टाण वास्ते, पलंग ना उल्टा सकिया तां समझ गया कि मेरे पलंग ते जिहड़ा बैठा है वह कोई मामूली इंसान नहीं। ते माधो दास बैरागी अपने आसन तो उठिया और ए देखण वास्ते आश्रम वाल तुर पिया।

अपने आश्रम विच पहुंचिया धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पलंग ते बैठे हैं। चार चफेरे सिख योधे शस्त्रां नाल सजे खड़े हैं।

प्यार अते सन्मान नाल उसने सिर चुका दिता अते इस तू बाद धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्ना ने बड़े प्यार नाल माधो दास नू देखे

जोरावर सिंह फतेह सिंह जिन्हां दी उम्र 6 साल 7 साल दे लगभग उन्हां नूं जिउंदिआं नूं नीहां विच चिण दिता गया। ते सारियां गल्लां माधो दास ने सुनिया, ओदियां अखां विचों

माता सती ने उन्हां नूं कहा, शंकर भगवान नूं, भगवान मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, उन्हां सारियां नूं बुलाया है पर ना मैनूं बुलाया ना तुहानूं बुलाया, परंतु वह मेरे पिता का घर है इसलिए मैं जाना चाहनी। शिवजी भगवान ने कहा, बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए, पर सती जी ना मने तो भगवान ने जान की इजाजत दी। सती जिस वक्त अपने पिता दशक प्रजापति दे महलों में पहुंचे, जिथे

शंकर भगवान का भी अपमान किया। जदों इस गल का सती ने बुरा मनाया ता दशक ने अगू सगा होर किया, ओ नंग तड़ंग शिवजी भगवान, मैं ते कदी भी राजी नहीं सा उसनू अपना जवाई बना के। सती ए बर्दाश्त ना कर सके, उन्हां योग साधना दे नाल अपने शरीर विचों अग पैदा कीती, सड़ के भस्म हो गए। शिवजी भगवान नू पता लगा ता उन्हां ने उस ही वक्त अपनी एक लिट पुट के सुटी, जिदे विचों भयंकर आवाज करदिया होया महाभैरो वीरभद्र वगैरा पैदा हुए, ते जिन्हां ने आग्या मंगी ता भगवान ने कहा जाओ उन्हां दुष्टां दा नाश करो जिन्हां ने सती दा अनादर कीता। ता उसे वक्त उन्हां ने दशक प्रजापति दा सिर वड के यग दी अग्नि विच सुट दिता। हर पासे खून दे फुहारे छुट पए, सारे लोग इउं नसण लग पए जिउ प्रचंड महातांडव नचदी होई परलो आ गई होवे। इसे तरह एक कथा शिव पुराण दी, शिवजी भगवान ने

मकान ढा दिते, शहर नू ढा ढेरी कर दिता। वजीर खान वो भी मारिया गया, उदे वजीर अहलकार जरनैल सिपाही सब मारे गए। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद ते फतेह कीती, अते जिस वक्त सरहंद नू फतेह कीता उदी इट नाल इट वजा दिती और फिर फतेह दा डंका बजा के ए नहीं कहा कि मैं जितया। हाथ जोड़े ते कहन लगे, धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह आप दी कृपा द्वारा साहिबजादे दी शहीदी दा अज मैं बदला ले ले। और सत साल जुलम दे खिलाफ तबाही अते बर्बादी दा ए तूफान बाबा बंदा सिंह बहादुर ने उठाई रखिया। बाबा बंदा सिंह बहादुर बेशक आप ना रहा पर तुरकां दी हकूमत नू उसने मिट्टी विच मिला के रख दिता। अते जदों फतेह कीती, तुरकां दी हकूमत खत्म कीती, ता उस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर ने फिर सिख राज दा पहला सिक्का चलाया और उसते अपना नाम नहीं गुरु दा नाम लिखाया। सिक्का जद हर दो आलम तेगे नानक साहिब अस्त, के ए सिक्का दो जहाना वास्ते है। गुरु नानक दी तलवार अते गुरु गोबिंद सिंह जी दी कृपा द्वारा

करुणालय है अर्थालय है खल खंडन है मैं मंडन है जगदेश्वर है परमेश्वर है। हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगद गुरु हे संसार ताप हरणी

राग गौड़ी दीपकी विच ऋषभ कोमल मध्यम तीवर अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस ते आरोह विच ऋषभ सुर वर्जित है। इस दी जाति शाड़व संपूर्ण वादी षड़ज संवादी पंचम अते समा रात दा पहला पैर है। इस राग विच तुम गावो मेरे निर्भौ का सोहिला शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई अवतार सिंह।

वर्ष वह करके अरसात समुद्र की मत कहो। काट वनस्पति सगरी दिख बहु के लेखन काज बने हो। सारसता पकता करके जुग कोट गणेश के हाथ रखे हो। काल कृपाण न बिनती बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न कूट बराद हमारे खंडो अनक विधि समझाओ अनक विधि समझाओ। हम अज्ञान अल्प मत थोड़ी

रखना खाली ना रहे। आओ सारे मानक दे दर ते हाजी अलग बाबा जी बचन कर दे सन जरा गुरु नानक दे दरों खाली चला जाएगा और सारा खाली रहेगा। आओ चोरी करो ते सारे हाजी अलग कीर्तन हो रहे कीर्तन में प्यार वाले कीर्तन रिकॉर्ड कर रहे टेपा लगी कुछ बुद्धि अनुसार जो सेवक बोली जाता है वो रिकॉर्ड हो जाता है। ये तो छोटी टेप है गुरु नानक पातशाह के दरबार इतनी वही सारी टेप लगी हुई है जो भी गुरु कुमारी भाई इतने आता है जिस पाउना आता है वो रिकॉर्ड होया जाता है।

अमरदास पातशाह जी ने दृष्टांत द्वारा प्रेरणा दी कि गंगा रामा का अमरदा क्यों है, लखमोर भी उंडी कर दे साडे ना दी कर दे। आखो श्री हौसला की लखमोर गिण के लै ली ते हुंडी कर दिती किहदे ना दी, प्यार नाल आखो तन श्री गुरु अमरदास पातशाह। पठान लाहौर आया, साहब जी पहला ही पहुंच गए, शहर के दरवाजे के जाके मिले, क्यों खान दिल्ली तू आए। पठान बड़ा हैरान हो गया, ये नू किवें पता लग। अदूर कह लगे तेरे को लखमोर दी हुंडी भी है। होर आश्चर्य है कि इंसान है कि कोई जादूगर, तन गुरु अमरदास पातशाह दे नां दी है वो असी। पठान खुश हो गया, अगे जी साहब जी तुर पे, पिछे पिछे पठान सजी दुकान ते सतगुरु जी लै गए, लखमोरे नू गिण के दे दिते। पठान तुर पिया, ख्याल आया मन इहो जे आदमी अगे कदे नहीं वेख्या। आखो सी पता नहीं ये इंसान सी कि कोई फरिश्ता। इहदे दर्शनां विच बड़ा आनंद सी, बोल चाल बड़ा चंगा, मेरे मन दियां बुझण वाला सी। चलो फिर एक वारी दर्शन करिए। पठान फिर जिसे ने परत के वापस आया, की तकदा है ना दुकान है ना दुकानदार है। आखो सही भाई, सेवक को निकटी पर सेवक अपने सेवक की आपे रखे, आपे नाम जपावे, जय जय काज कीर्त सेवक की तहां तहां उठावे, सेवक को निकटी पर। इधर लखमोर गंगाराम को लागी, बिजनेसमैन था के बड़ा सी, जो व्यापार कीता अगे नालों भी वड्डा सेवक, सारे शहर गंगाराम फरमा पिया चल दी। इधर तीजे पातशाह के दरबार च एक बुढ़ा ब्राह्मण आ गया, हाथ जोड़े पातशाह मेरे उत्ते भी कृपा करो। अदूर कहन लगे ब्राह्मण देवता की चाहने पातशाह, घर विच कन्हे नौजवान हो चुकी, कौन समर्था नहीं, आप कुछ मदद करो ते ए पारा सिर तो ला दे। जिन्हें घर विच बच्चियां तो तेनू 500 रुपया मिल सके, महाराज हुक्म करो। अदूर कहन लगे साडा गुमास्ता रहिंदा है गंगाराम सेठ दिल्ली, ओहदे नां दी 500 दी हुंडी कर देने जाके उथों लै लो। ब्राह्मण ने कहा सतगुर, हुंडी लै के तुर पिया, दिल्ली पहुंचया, पुछदा पछांदा सेठ गंगाराम अगे की सिलसिला, उसे तरह दरबार खड़ोता है। अंदर मुनीर वहीं लै के बैठिए, बड़े सारे गद्दे उत्ते सेठ गंगाराम बड़े टौर नाल बैठा है, लैण देण हो रहे। ब्राह्मण अंदर जान लगा, दरबान ने रोके, ठहर जा, कोई मंगता है? कहने लगा मंगता नहीं। अंदर क्यों जाना? सेठ नु मिलना, क्यों? मेरे को हुंडी है। दरबान ने पंडित दे मुंह वाल वेख्या, कहने लगा ठहर। अंदर गया, गंगाराम नु जाके क्या, महाराज ये गरीबड़ा जे आदमी है ते ओ तुहानू मिलना चाहता ते नाल कहिंदा भी मेरे को हुंडी भी। गंगाराम ने सुनिया, मथे ते त्योड़ी पा ली, दरबान नु क्या अंदर भेज दे। ब्राह्मण अंदर चला गए, हा भाई किदा है? ब्राह्मण ने 500 रुपये दी हुंडी कहने कीती है। ब्राह्मण ने कहा तन गुरु अमरदास पातशाह जी ने तेरे न। सोच सोच के ब्राह्मण वाल वेख के कहिंदा केड़ा अमरदास? आखो श्री वाहिगुरु केड़ा। ब्राह्मण ने कहा गंगाराम अमरदास नहीं तो तन गुरु अमरदास पातशाह। हाँ हाँ वो बुढ़ा अमरदास। आखो श्री एक मोड़ है प्यारी साहब सिंह, जिंदगी भी अंदर आंदा है जिथे आके इंसान कई मेरी दात प्यारी। इस मोड़ वास्ते ही, क्योंकि आंदे इस वास्ते ही किसे महापुरुष की संगत की लोड़ है, नहीं तो आदमी वड़े वड़े फेल हो जाते। इस सरपनी पे कौन है बलिया जिन ब्रह्मा विष्णु महाविष्णु, अरे छल तो कौन बचदा, त्रै गुण मोया मोया आकाश, हम सदगुरु राखे देकर। ब्राह्मण ने कहा तन गुरु अमरदास। गंगाराम अपने मुनीमा वाल तकदे ते कहना भी वेखो कोई अमरदास दा लैण देण अपने नाल है कोई खाता? मुनीमा ने सारियां वहीं खोल के सिर फेरे, देखिया अमरदास दा कोई खाता नहीं, वह भी कोई वही जिन्हें गुरु का खाता कोई नहीं। आखो सही भाई, वही अधूरिया, वह खाते संपूर्ण नहीं हैं जिन्हें पूरे गुरु का खाता।